0: घर से पाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित टीचर्स को बाप दादा के चलन और चेहरे से मान जाए कि इनों को कुछ विशेष प्राप्त।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी प्यार के पालना से आगे बढ़ रही है या कोई बीच में विघ्न आता है? रुकते तो नहीं है? बाप दादा ने

बच्चों में है, चाहे कितने भी रुकावट छोटी मोटी आए, लेकिन बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों को देख एक बात में बहुत खुश होते।

चौका लक्ष्य और लक्ष्य देख।

Appreciate.

0: दूसरी बातों को नहीं देख। आगे पढ़ना ही है। बोलो, सबको ये लक्ष्य है, आगे पढ़ना ही है, वो हाथ उठाओ। एक दो की कमजोरी की बात, सुनते भी जैसे नहीं सुनो, खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: उसकी

感是吧？夜晚上，我们都玩起是吧？是搞阿彪子，阿彪子个路。Voice.

Babi. Babsat. Ababi. Mansa Akarshan. Ruani Akarshan. Se. Jo atmae aegi wo samay anusar samay kam mehnat kam aur ब्राह्मण परिवार में फिरती करने के निमित्त बनेगी वही पहले वाली रंगत अंत में भी जैसे आत्मा ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण के रूप में अनुभव साक्षात्कार अलग चीज है लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते खाते पीते चलते थे अपना में एक बाप ने किया अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे वो समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है वही जब बंद का प्रभाव अनुभव करेंगे तब बाप से आप सभी की समापति के समय भी बाप
kesatsan. Ciao.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सच्चे बाप से वेरीफाई कराया

0: मैं आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठी कर दो ना, बढ़ाते क्यों। तो आज बाप को बहाने बाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये का कीर्तन समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा का गीत गाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक
4: विशेष जमा करो।

Nusra, Sada, Santosh Rehna, Santosh Karna, Sirf Rehna Nahin, Karna Bhi, Uske Phala Swaroop, Duaye Jama Karo, Duaye Ka Khata, Kabhi Kabhi Koi Bacche, जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी करना। तीसरा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है

0: बीच उसमें चिप जाता है, ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार चिप जाता है और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती, शॉर्ट और स्वीट ये दोनों शब्द याद रखो, और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जो खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाता है, इसलिए अपने किसानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे सेवा और भगवत से कर रही है, ऐसे स्वयं को भी सेवा और विश्व सेवा, स्वसेवा अर्थात चेक करना और अपने को पाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Beep.

0: दूसरे को देखना ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। ये तो होता ही है, ये तो चल सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है। पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रही। सलोपकन भी है सी फादर सी सिस्टर सी ब्रदर। ये सलोकन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

याद करने वाले बच्चे वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा सभी के मन में।

Timmy.

सबके फेस से। खुशी

ちょっと。

Бабка едет, баба батюка едет, баба. Gate wedding.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इंसान Listen.

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं फिर से।

tetapi bab tetapi mane man me dance.

0: wie man mit Hans geredet. Bolo Hansi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेंटर तो सब सेव
3: है, सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
2: फिर भी बॉम्बे बाप का है ना, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
3: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
2: इससे बहुत कुछ होना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवादारी ग्रुप देखने में आता है, सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं होती, फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो अपना एक कार्ड चपा के रखो जिसमें ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो, तो और आगे शफा चाहते हो तो ये एड्रेसेस है जहाँ आप रहते हो वहाँ की एड्रेस हो सेंटर की, यहाँ जाके अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख के देते हो ये दवाई लेना ये दवाई लेना, तो पर्चा देने के समय ये कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है, एक प्रकृति के तरफ से टेंशन, परिवार के तरफ से टेंशन और अपने मन की तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई ये है, ऐसी कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा आपके सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते है वो करो। डबल डॉक्टर हो ना, सिंगल तो रही हो, डबल डॉक्टर है तो डबल सेवा। जब पेशेंट आती है आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है ये चीज नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है, जो भी आवे उनको समय मुकरर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुला के और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो, तो क्या होगा आपकी सेवा बढ़ती जाए। संदेश देना और बात है, संदेश से खुश होते हैं, लेकिन राजयोगी नहीं बनते हैं। जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकते। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा कर, लेकिन सदा के लिए नहीं कर। दवाई खाए बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। सभी ने ध्यान से तो नहीं कानों खोल के सुना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी

ese.

Verlernen.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जगत

Sí.

Escalier.

Merci, ça me fait peur.

अपने में चेक करो। बाप दादा के ऐसे

say it. It's God's side.

piensan por ti, Jenny. Or second.

उसे आता

0: क्षमा करने का।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

बिपाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है, जब बाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाता।

0: ये तो जाना ही है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सकता है। टीचर्स वाला हो सकता है पहली लाइन, हो सकता है पांडव, हो सकता

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: That's

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sí.

ऐसे सबसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पर ही चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपने अपने वर्ग के अच्छे अच्छे अनुभवी, उनके अनुभवों का किताब छपे है वो हाथ उठाओ, कोई ने नहीं छपे।
4: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है।
3: यूथ
4: और एजुकेशन,
3: एजुकेशन चलो
4: सभी का भी छप रहा है, कहते हैं मिला जुला
3: छपना चाहिए, क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री हो पढ़े, और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है, तो लोगों को उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

फिक्र नहीं, लेकिन फकोर जाना।

से एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म।

0: जीवन कितने कोष्टमा बन जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नंबर वार तो है, अच्छे भी है, तो साथ में किट किट वाले भी है, लेकिन ये ऐसा है वो समझना अच्छा है, जो रंग है उसको रंग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है, समझना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में को सदा जाएंगे तो बहुत। और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं। मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। तो इतना अपना स्वमान सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: से रुका जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

parte. समय खराब चीज लेनी होती है।

समझते हो, पहली लाइन तो लेना राइट है, राइट राइट है मधुबन वाले, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए पहली लाइन इच्छा।

Cosa nello.

Jesus, one of Medico. Sahan Shildaki Devi.

smrtimela. Sarek.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अचानक

0: इसलिए अभी बाप दादा हर बच्चे को एक स्वमान देते हैं। हर बच्चा संकल्प किया और हुआ, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। कहते हैं दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता माना ही सफलता। अगर सफलता नहीं है तो दृढ़ता नहीं कहेंगे। तो आप ही दृढ़ता भाव ये अपना विशेष स्वमान रोज अमृत वेले स्मृति में लाना और उस विधि पूर्वक आगे बढ़ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का मुश्किल

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सदा

Yeah.

0: Oh,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हजार कदम मदद

पैसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधा।

0: जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले, गिफ्ट दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय विदेश जी, जय भारतवंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समय हुई, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है ना से कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी, एक बार नहीं अनेक बार के विजयी आत्माएं। पीछे वाले बच्चे विजयी हो, हाँ विजयी हो, हाँ ये कुर्सी वाले बच्चे कुर्सी पर बैठे हो, अच्छे सब विजयी है। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजय बन का रूहानी नशा निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

见。

じゃ。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाते हैं जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आता है, लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाता है, आ जाता है ना, नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की, कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है, मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं कष्ट भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। जिसका अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करेगा। सरापी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्वाण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर नहीं।

Avertidevas. But don't care.

a baby. हर एक बच्चे के लिए छत्र छाया बना।

missing. Okay.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ।

और से गेंद गाड़ी तो बन गए।

0: noite. Porta da cozinha.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ। आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

हार के पीछे नहीं सोचो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्तो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माए दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त है। मुक्त है, मुक्त है। अच्छा दिलारे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल प्राप्ति चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करती है, नेगेटिव भी आती है, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त न्यारी और बाप की प्यारी रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है उसको जमा करो, खाली नहीं रहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, समय पर मान, हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखती है कि पंद्रह दिन के बाद फिर

विभाग दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच

फीचर्स बताओ। हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। क्यों बाप

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Cushy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देखा संगठन में रहते आत्मक दृष्टि, आत्मक वृत्ति, आत्मा आत्मा से से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। आप इस सेवा के विस्तार में चलना बोलना संपर्क में आना मर्ज हो गया, खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया। So

So.

स्वेष्टात्मयो देवात्माओं के सबसे मिल।

você. Saman sambarak meu. Harsame. See.

0: सबसे सहज पुरुषार्थ होते हैं। सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे समय में

0: स्वरूप बना, इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रही है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वभाव के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See?

J'adore ces...

जवाब टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते हैं ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाऊं। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाऊं। स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टाप पर दिखाते हो ना। तो नीचे आए सेवा की, फिर टॉप अस्त।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्मा को इच्छाओं से बचाओ, सभी पाप के साथ ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ, पाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से का वायुमंडल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा, को पता है। हाथ तो उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है, कौन तैयार है अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि तीन बिंदु सदा याद रखो, आठ नंबर सात नंबर तो फिर भी गड़बड़ से ले।

0: tě Mateo, to jsi sličný manč pár, karam karne ke lije jo, je sličný manč drama. To drama me, čo by karam kia, स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉप भी क्या है बिंदु, इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तो किसका है, पैसा, पैसे का मैं तो है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो क्या बन जाए, ऐसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करावनार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ, बिंदु तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Siete.

e parivarse.

system.

Wonderful.

Pero...

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Peace.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो।

Yeah.

estás?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अभी रिजल्ट

Garrett Bartomi. Jai Virat Sangalabhumi. Jai Virat Vevarbi. Jaise koi koi ko शरीर में भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती वो मन जहां जाओ जैसे जाओ Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा पड़ता। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव किनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उनके मन में, ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपन ने बाप समान बनने के स्थिति द्वारा बाप को प्रतिज्ञा करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है, तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने जाते। चारों और कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी।

Stop.

0: उसके लिए थैंक्स।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिम्मेवार होते हैं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा माना के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

சச்சீதல், சாஃப்தல், படிதல், தீர்ப்பாத்த யாத்திரக்கு சச்சீதல், சாஃப்தல், படிதல், தீனோ பார்த்தே அகர் கோய் பி சமே துணியா கே ஹாலத்தோ மே பி துணியா கே ஹாலத்தி கேசி பி ஹோ லேக்கன் தீனை பார்த்தே ஹே தோ ஆப் சப்கோ தால் ரோட்டி பாப் திலாயேங்கா. दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी. दाल रोटी खाओ, प्रभु के को न खाओ. अनुभव किए ना पुराने जो पहले पहले आए हैं, उन्होंने अनुभव कर लिए. कभी भूखे रहे और ये जो गुण है ना उसको पोरन पीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था. और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं, सबका पेट भर गया. पोरन पीटा बनाने आते हैं, नहीं आते. कैसी भी हालत हो, ये गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये पोरन पीटा बहुत सुख देता है. बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना. आई वेल में ये पोरन पीटा बहुत काम में आएगा. लेकिन चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा. इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं: सच्चाई, तनकी मनकी तनकी, संबंध संपर्क सच्चाई. दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूर्ण हो ही जाती है. करके देखो, जहां दिल बड़ी है ना वहां सब इच्छाएं पूरी हो जाती. दिल छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh shit.

स्वरूप

escucharte.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

let him see. क्यों कबाब भी चाहते हैं।

सभी बच्चों को बेहद

ya bien. Get to call next.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sutilna. Sutil. Acan. Karena pelipi. Kayane. Ke. Korova. Sena. Ke. Nimitta Panivimavir Ka Kalyan Kisya Dwaramva Shakti Dwaramva To Shakti Ka और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा भाव परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहां पहुंच नहीं पाते। के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही है। Oh.

0: अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Revise

Chan. Как курс. Опять.

0: सामने रखो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के लोग

0: बनाओ, मातानी बन, निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ, मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाचा द्वारा, ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, सारा दिन चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म तीनों द्वारा महादानी बने, समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कब कब दान किया नहीं,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे। अगर ये समझ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: पीछे पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओ मां गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादियां स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्का दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किमिया के साथ सिक्का दो। सिर्फ सिक्का नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्का दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: sé qué decir. Mira, mamá. Islie. Pap Kabi a ti pier. Srapap tada. Ek bat. Firse. Yad dilara ki apna chehra sada khushnuma khushi mein chamakta rahe. Baat chali jaye lekin khushi nahi jaye. Sangam yug ki khushi parmatam gift hai. The holy artat koi aisi baate aave to yaad karna ki holi bana ke aaye. जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिले तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी सबने खाई सदा खाते रहना इसमें कोई बीमारी नहीं होगी अच्छा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपने किरणों द्वारा

पर। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंगोत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

falta, Svaru. Banana. सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है, सिर्फ उसको प्रैक्टिकल पे लाना है। है सफलता स्वरूप, स्वरूप ही सफलता है।

सफलता की बात को भी सफल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध क्या नहीं तो आत्मा के लिए स्वरूप ईर्ष्या द्वेष घृणा अंदर में होती है, उसके स्वरूप में

ऐसे लाल पीला नहीं होता, लेकिन अंदर लाल पीला फिर भी

0: रूप भी है। वो चतुराई का रूप है, क्रोध के चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसी समझती है, वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे कोई समस्या आई तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आकर के दृढ़ संकल्प कर ऐसा होगा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति भी है मटेन, मटे मटे में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे आनंद नहीं भरा।

0: isn't gonna maybe can burn a but to can burn a wala con to kis kiti noi लगता अच्छा लगता है या दादा अच्छा लगता है तो लेवता के पीछे क्यों पड़ते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो, सफलता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वापाड़ी वर्तन से विश्व की तपाई।

से होती है जो विशेष आत्माओं के निमित्त होती है। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियां है, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए। सामने वाले बैठे हैं, महारथी बैठे हैं, होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते, यो नहीं करते, नहीं। पहले मैं इस

Some

Chief.

श्रेष्ठाचार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का सने की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी सने, सने नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सनेही पाप का, सनेही परिवार का, सनेही सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप। इस वर्ष क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, ओ मां को उत्साह बढ़ाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देव देविया और देवताएं हो ना, हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

You didn't.

चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल सभी अपने को।

Sit.

sabah hati karma.

Good evening.

Spring.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारिया क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में सत में मिट गए। नौकरी नौकरी करने भी पड़ती, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमस्टेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, बोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं स्वोन्नति में अपने सरकमस्टेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना।

0: अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली है? अगेंस्ट नहीं हो किसी के प्रति भी, एडजस्ट होने वाली। अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाथ उठाओ, एडजस्ट होने वाली सोच के हाथ उठाओ। अच्छा इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न सभी को कह रहे हैं कुमारियों को, मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर इन एडवांस मुबारक को, मुबारक को, मुबारक।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: शरद में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: It's sunk.

0: जो दृढ़ संकल्प किया जाता है दृढ़ का अर्थ है फिर वापस नहीं आए। फिर पता है बहुत मीठी मीठी बातें करते जब फिर आ जाता है कम है ना दृढ़ संकल्प दाढ़ी बनो करना ही है और उस मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर बैठ के उस संकल्प को संस्कार को समाप्त करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चल रहा है, तो हम ऐसा कर और आप आकार और निराकार, अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए योग लगता नहीं है तो क्या करें, उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, है डॉक्टर, उल्टी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, सामने उल्टी करेंगे सोचो, पाप की आखिरी उल्टी करेंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों?

सफर था ना ये बीमार याद नहीं दिलाती। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे है उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है कलयुग में सबसे ज्यादा है

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा तो कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना, तो चतुराई नहीं करना। पाप को भी बहुत री जाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया की सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है तो आप कौन हो। आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन मैं सुस्ता से सुना के खत्म। एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

姐。

صدا سر جو

सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है।

0: Stay button. So yet with it.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

前哎。

Same.

Medien.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है सेवा नहीं। और नीचे ऊपर होती है निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बन होती सभी एकदम न्यारी और प्यारी बन करती, स्वार्थ से न्यारी और सर्व के संबंध में प्यारी, चारों और
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नवनिर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रैल रूप का भी अलबेलापन दे। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना तो पड़ेंगे ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Wow. नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना सुबह कहां से इमर्ज होते हैं? तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मा जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम, तो बाप दादा भाग्य को भी देख रही है और इतना श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष बना रही हो ना, क्या क्लास कराते हो मुक्ति वर्ष? है मुक्ति वर्ष? मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथ लाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा सभी हाथ उठा रहे। वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, रच की न जाए ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभाल के हाथ उठाओ, बाप दादा के पास इस टीवी में आवे ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति बोले से

色的哈拉阿特玛基别的修不包纳基波Wow.

0: sana. Divya. Jivan King. Sarva Gunoha Kasana. Jamanai Kya. To fit a Sajamakar Nika Same.
1: और शक्तियां जमा हो रही।
0: एक खजाने का गौरव और शक्ति से संबंध। जैसे साधारण बोल नहीं दिए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Amigo.

0: सुराज।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना, तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है, जो कर सकते हैं बीच बीच में, बीच बीच में ऐसे करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 वाड़ी फरिश्ता बनो, 12 वाड़ी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो, फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है।

0: जा नहीं सकते तो इनों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आए हैं ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उनों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना नींद, नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में भराओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये मिलन विचित्र है, सब इस बात में वाह वाह वाह कह रही है।

puppy is sucker.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। तो बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम,
4: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes, sir.

0: Semiplana. Apos me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सहज चम।

0: oyente. ¡Ay, qué loco!
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उनों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ

0: 想的。
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे। भले बजाओ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम। बेहद बाप दादा ने देखा है, मैं जाटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि टेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, उसमें हाथ आ जाती है, वो प्रवृत्ति नहीं होती। नाम और मान पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृद्धि कम हो जाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई मेरे बच्चे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

ちゃ

Ready?

సంతోషం మడిన స్వయం కోపి పిటి.

假。

ಶಕ್ತಿ.

जो संतुष्ट रहते हैं उसकी निशानी सदा पर्सन

さ

परेशान नहीं होता।

0: Chân ăn bột.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कारण

with me. जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट समाचार जैसे अच्छे लगते हैं।

Samadhi. Katne dialisken. Andar to sunli mana samadhi. To baat sachi bhi hai. Samachar. सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी।

दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सुनते तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, श्रीमत में पारम मत मिक्स क्योंकि जो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली मानो एक बार ही आपको समाचार सुनाए, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? कि आपने सुना, वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते है तो कर सकते हो कुछ तो करो। सुनो, या इतनी ताकत है आप में जो उसको सदा के लिए वो स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से दृष्टि से समाचार सुनने वाली आत्मा के प्रति संकल्प करना भाव कर। इतनी पावर है आप में, तो सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी। थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते गिरना पाओ या चार चलन में
उस समय

out.